पिएंगे नाचेंगे खाएंगे डिस्को के धुन पर अपने प्यारी के साथ खूब नाच भी करेंगे।